श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे राम फाटक के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वामी स्वरूपानंद की रचना शंकर घाणेकर के स्वर में।

श्रोताओं, अमृता गोखले के स्वर में आप सुन रहे थे वसंत बापट की रचना। कार्यक्रम में अब सुना रहे हैं नामदेव महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है दीपक पाटेकर ने।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दीपक पाटेकर ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत

अभी आपने श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र का निर्माण था। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्रा. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी. तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्रा.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. Listen first to a tabla recital in Teen Taal. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying him on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to the tabla in Teen Taal.

tug to the

Then,

ಕಡಗಡ.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहन लाल मिश्रा। आपके साथ हारमोनियम पर थे सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुदीप कुमार घोष। आपके साथ तबले पर हैं सौम्योदीप मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुदीप कुमार घोष।
1: You were listening to a tabla recital in Teen Taal. Our artist was Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying our artist on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a santoor recital. Listen to the santoor in the rag Ahir Bhairav. Our artist is Sudeep Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla is Shomodeep Mukhopadhyay. Listen now to the santoor in the rag Ahir Bhairav. Our artist, Sudeep Kumar Ghosh.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिर भैरव पर संतूर वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुदीप कुमार घोष। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सौम्योदीप मुखोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ संतूर रिसाइटल इन द राग अहिर भैरव। Our artist was Sudeep Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla was Shomodeep Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत।

सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है पूर्णिमा धुमाड़े। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मारू बिहाग। सुनते हैं विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है। बोल है परी मोरी नाव और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। बोल है नैना लगाए मैंने। साथ संगत तबला माधव मोड़क, हारमोनियम सुयोग डलकर। तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग। कलाकार पूर्णिमा धुमाड़े।

अभी आपने सुना पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग मारू बिहा। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे माधो मुण, हारमोनियम पर थे सुयोग कुणकर। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मोरी सुधलिनी और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रे बनरा प्यारा। साथ संगत तबला शंकर कुंभर, हारमोनियम चैतन्य कुंटे। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण।

श्रोताओ, अभी आपने सुना पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभर, हारमोनियम पर थे चैतन्य कुंटे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। राग हर पल हर समय आपके साथ।

スタート。ドン。デン。ドン。ドン。ドン。トン、トン、デン、デン。

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है शरण रानी का सरोद पर बजाया राग दरबारी. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a sarod recital by Sharan Rani. She first presents Rag Darbari, in which here a composition set to vilambit and drut teen tal.

0: अभी आप शरण रानी का सरोद परवाया राग दरबारी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए चंद्रनंदन, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग दरबारी। कंटिन्यूइंग विद हर रिसाइटल, शरण रानी नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग चंद्रनंदन, इन विच यू विल हियर अ कंपोजिशन सेट टू विलंबित एंड द्रुत तीन ताल।

0: अभी आप शरण रानी का सरोद पर बजाया राग चंद्रनंदन सुन रही थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड राग चंद्रनंदन एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय शरण रानी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Pamaga, Garisavina, Haka.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत कार्यक्रम में. आप सभी का स्वागत. सुनते हैं तबला वादन. कलाकार है पंडित आनंद बदामीकर. प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया तबले पर ताल छपताल सुनते हैं. आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर. तो आइए सुनते हैं तबले पर ताल छपताल, कलाकार पंडित आनंद बदामीकर.

mai și cea cărdan. Tak, dina tada, tak, dina tada, tak, dina tada.

श्रोताओं, अभी आपने सुना तबले पर ताल छपताल। कलाकार थे पंडित आनंद बदामीकर। आपके साथ हारमोनियम पर थे उदय शाहपुरकर। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं तबले पर ताल तीन ताल। कलाकार है पंडित आनंद बदामीकर। आपके साथ वायलिन पर संगति कर रहे हैं रत्नाकर गोखले।

ಧರೆ ಕಡ್ತಕ್ಕೆ ತಗಡ್ದಾ.

ಕ್ರಾಂಧ ಫರ್ಮಾಯಿಸಿ.

श्रोताओं, आप सुन रहे थे तबले पर ताल तीन ताल। कलाकार थे पंडित आनंद बदामीकर। आपके साथ वायलिन पर संगति कर रहे थे रत्नाकर गोखले। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बागेश्वरी में गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शौमाल्य मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मेहर कुंडू। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a guitar recital in the rag Bageshri. Our artist was Shomallo Mukhopadhyay. Accompanying him on the tabla was Mihir Kundu. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन. कलाकार हैं सरदार खां, राग है जौनपुरी. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम स्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सारंगी रेसाइटल बाय सरदार खां. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द एकॉम्पैनिमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम स्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला accompaniment has been provided by हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन। कलाकार थे सरदार खां। संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH, Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है रविराज शंकर का बजा बांसुरी वादन. सबसे पहले आप राग विभास प्रस्तुत करेंगे. मध्य लय बंदिश रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. आपके तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग विभास। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग श्याम कल्याण में एक रचना जो कि रूपकाल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग श्याम कान। आइए अब सुनते हैं सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया राग माज खमाज में छोटा ख्याल। बोल है आली री मोरा मनहर लीन हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया माझ खमाज में छोटा ख्याल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: अभी आप विदुषी शन्नो खुराना का गाया राग चंद्रकौंस सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग सावनी बिहाग। झपताल के हैं जाने अकल सब और तीन ताल मुनिबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं नाद भेद अपरंपार। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर रहमान कुरैशी ने।
1: यू विल लिसन टू अ वोकल जनरेशन इन राग चंद्रकौंस बाय विदुषी शन्नो खुराना। नाउ लिसन टू अ राग सावनी बिहाग। द वर्ड्स ऑफ झपता आर जाने अकल सब एंड द वर्ड्स ऑफ ध्रुत रचना सेट टू तीन ताल आर नाद भेद अपरंपार। He is accompanied by Akhtar Hasan on the tabla, on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami, and on harmonium by Rehman Qureshi.

0: अभी आप विदुषी शन्नो खुराना का गाया राग सानी बिहाग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर रहमान कुरैशी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a vocal rendition in Raag Savni Bihag by Vidushi Shanno Khurana. He is accompanied by Akhtar Hasan on the tabla and on Sarangi by Pandit Bharat Bin Goswami and on harmonium by Rehman Qureshi. This program is the presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत. संत तुलदास की ये रचना प्रस्तुत है. स्वर है मलय बनर्जी का, बोल है विनती सुनो मेरी.

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए अब सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

संजीवनी भैलांडे के स्वर में आइए अब सुना जाए संत मीराबाई की ये रचना, तुम मोरी राखो लाज हरी।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। सविता बनर्जी की आवाज में आइए सुनते हैं गुरु नानक की रचना, बोल है एक सहारा है तुम्हारा।

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की ये रचना, बोल जब ते श्याम।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डिय चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।